नमस्ते प्रणाम राउर लोगन का स्वागत करत हई विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगम चैनल के माध्यम से रवरा भोजपुरी समाज के उपहार स्वरूप भेंट कर बाटी। हमनी के शुरू करने के कई गो वजह बा। हमनी बचपन के शर्म आवत और आपन भोजपुरी बोले में, अब गौआ के घर घर में हिंदी बोले सब शुरू कर दे आई। यह बहुत निराशाजनक और दुख की बतिया है। खब आज सख जरूरत है राउर अपने बचपन के अपने अपने घरवा में अपन भाषा भोजपुरी में ही बतिया करी, नहीं तो बचपन देसी मुर्गी बिलायती बोल सीखत बाटी। एडल्ट में साउथ ऑस्ट्रेलिया रेडियो प्रोग्राम 5EBI 103 के माध्यम से इस भाषा का प्रचार प्रसार के साथ राउर लोगों की सारी कार्यक्रमवा समाचार हिंदू त्यौहार और चर्चा कैले जाइब। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड जैसन प्रांत जवन भोजपुरी का गढ़ बा, जौने भी फिल्म में भोजपुरी गाना रहत रहल बा, फिल्म बहुत ही हिट होत रहल बा। हमरा के बुझाइल कि जे हम भोजपुरिया भाषा खातिन बनल बाटी, हालांकि आज तक महतारी के कर्ज केहू उतार नहीं खे पावत बा। मातृभाषा हमारी महतारी लेखे हुए भोजपुरी हमार मातृभाषा हुआ। भोजपुरी संस्कृत सभ्यता रहन सहन अतिथि सादर सत्कार खान पान तीज त्यौहार ये सब हमारा जो है राउर लोग जनता बाटी कि एकर कहीं जोड़ ना बा, कला का जोड़ ना बा। वहाँ का हम लोगों का इतना कला बा कि उकर कोई वर्णन करे बहुत मुश्किल बा। घर एक रत प्रचार प्रसार खातिन अब पहल करत बाटीन। रउरा लोग इसे जरूर जरूर सुनी है, ये प्रोग्राम जरूर सुनी है। अयो दादा सब भोजपुरियन राउर लोगन का अभिनंदन करत बाटीन। रउरा सब लोगन सुनत बाटी न, अब एक भगवान शिव का भजन वा सुन ली हैं तो कैसन आपके लगल है? अच्छा लगल है ना? हमके लगल है कि आपके अच्छा जरूर लगल हुई। तो हम चलत बाटी आप फिर लौट के थोड़ी सा हिंदी बोले, इतना बोल लेनी आप लोगों के थोड़ी शुरू कर दे ले बाटी। तो हम अब शुरू कर बाटी अपने हिंदी में। तब मैं यहाँ भारत में 2012 में आई थी और मैं भारत में उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ। मेरा बचपन वाराणसी जिला के एक छोटा सा, जैसे पहले भी बताई थी कि गांव में बीता और मैं अपने नाना के घर में ही बड़ी पली हूँ, क्योंकि मेरे मामा नहीं थे तो मेरे नाना ने मेरे पिताजी को ही बेटा की तरह रखा था। तो अब मैं बनारस के बारे में बात करूँगी और वहाँ पे वहाँ के कवि लेखक भगवान ये सब चीज़ों के बारे में। अभी आज मैं संत कबीरदास जी के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रही हूँ। उनकी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों को जब हिंदी पढ़ाती हूँ तो उनके दोहा जरूर पढ़ाती हूँ। तो मैं पहले कबीरदास जी के बारे में बताऊँगी, फिर उसके बाद उनके दोहा कुछ बोलूँगी, तो आप लोगों को मुझे लगता है अच्छा लगेगा। संत कबीरदास जी की शिक्षा और विचारधारा के बारे में है। कबीर ने अपने जीवन में अंधविश्वास, जातिवाद, धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास किया और सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। कबीर की रचनाएं सरल भाषा में थी, जिसमें उन्होंने प्रेम, समानता और एकता का संदेश दिया। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल की गई हैं और वे भक्ति आंदोलन का प्रमुख कवियों में एक माने जाते हैं। उनका साहित्य में क्या योगदान है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें करूँगी। कबीर की प्रमुख रचनाओं में कबीर बीजक, सुखनिदन, रमैनी और शब्द शामिल है। उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा जाता है, जिसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों के शब्द शामिल हैं। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से गहरी सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का उजागर किया। उनके दोहे आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। तो जो कलिमाज न होते तो ले वेद अरु कलयुग मिली कर भगत रसातल देते। उन्होंने लिखा कि हरि मोरा पीव भाई, हरि मोरा पीव, हरि बिन रहि न सके मोरा जीव। तो कबीरदास जी की जो कविताएं हैं, कबीर के काव्य का प्रभाव व्यापक रहा है। वह देश काल की सीमाओं को पार कर अनेक भाषाओं में
अनुवादित हुआ। उन्होंने जाति वर्ग एवं संप्रदायों की सीमा का अतिक्रमण कर ऐसे मानव समाज की स्थापना की जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति भी निसंकोच होकर सम्मिलित हुए। यही कारण है कि कबीर पंथ में हिंदू और मुसलमानों का प्रवेश समान रूप से देखा जाता है। कबीर वास्तव में एक ऐसे महाकवि थे जिन्होंने जीवनगत सत्य का संदेश शौर्य के दृष्टिकोण से रखा। जीवन की स्वाभाविक सात्विक और क्रियाशीलता में ही उनके धर्म की व्यवस्था है जिसका प्रसार उन्होंने शब्दों और साखियों में किया है। सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, न भय रहे तनिक सा भी। सत्य की विजय सदा, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, न भय रहे तनिक सा भी, न भय रहे तनिक सा भी, साहस हृदय के द्वार हो। सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। मे ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ, मे फॉल्स हुड ऑलवेज बी डिफीटेड, एंड मे देयर बी नो ट्रेस ऑफ फियर, मे देयर बी करेज एट द डोर ऑफ द हार्ट, मे ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ एंड मे फॉल्स हुड ऑलवेज डिफीटेड। तो संत कबीरदास जी हमेशा सत्य के बारे में ही गया। अभी मैं उनका थोड़ा सा पढ़ूंगी दोहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोहा पढ़ने में, मैं बच्चों को सिखाती हूँ, आपको पहले बताई थी, तो मैं आज दोहा भी पढ़ूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े

दूर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रो दे मुही, एक दिन

चल मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो य कबीरा, ऋतु आए फल हो। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पाछे हंसे सब कोय कबीरा, पाछे हंसे सब कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई,

मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार, कबीरा कल हमारी बार। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहन दो म्यान कभी।

अभी तो आप भगवान शिव का जो भजन सुन रहे थे उसका बहुत आनंद आया होगा, और राम में ही शक्ति है और वहाँ पर लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, बनारस में लोग, वहाँ पे सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के ज़्यादा प्रसिद्ध हैं दोहे, और सभी लोग दोहा वहाँ के जब तक नहीं बोलते तब तक कोई काम नहीं करते भाई, वो सभी के मुंह पे दोहा होता है। तो हम फिर कबीरदास जी के दोहे सुनाती हूँ आप लोगों को, तो आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों को दोहा सुनाऊँ। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे शीस देही ले जाय कबीरा, शीस देही ले जाय। जिन घर साधु न पूजिए, जिस घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही ते घर मरघट जानिए, भूस भूत बसे तिन माही कबीरा, भूत बसे तिन माही। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुहाय, जैसा सूप सुहाय, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाय कबीरा, थोथा दे उड़ाय। संत कबीरदास के प्रसिद्ध दोहे बहुत हैं, जो कि मैं थोड़ी से उसमें से एक सलेक्ट करके लेके आई हूँ, मुझे जो पसंद है, तो आप लोग सुनिए फिर मैं। यह तन विष की बेलरी अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु बिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। दोष पराए देखी कर, दोष पराए देखी कर, चला हसंत हसंत अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत कबीरा, जिनका आदि न अंत। तिनका कबहुन निंदिए, तिनका कबहुन निंदिए, जो पावन तर हो, जो पावन तर हो, उड़ी आखिन पड़े, उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय कबीरा, पीर घनेरी हो। जो तो को काटा बुआई, जो तो को काटा बुआई, ताही बोए तू फूल, ताही बोए तू फूल, तो

शूल, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप कबीरा, अति की भली न धूप। ढोंगी मित्र न पालिए, ढोंगी मित्र न पालिए, सरपिल जा की धार, सरपिल जा की धार, नफरत भीतर से करे जख्मी करे हजार, कबीरा जख्मी करे हजार। ऊंचे कुल न जन्मिया,

काम बिगाड़े भक्ति को, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, क्रोध

को बिगाड़ मोह बिगाड़े ध्यान कबीरा मोह बिगाड़े ध्यान। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे

बैर। एक कबीरदास जी ने जो लिखा है कि बाजार में खड़े हैं और सबकी भलाई की कामना करते हुए, कोई गठबंधन कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनका शत्रु नहीं है, कोई उनका हित नहीं है और उसे किसी से कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी जो वाणी है। तो उस कबीर के दोहे का स्वाभाविक सद्भावना सार्वभौमिक कबीर के दोहे में सार्वभौमिक सद्भावना और निष्पक्षता का गहरा संदेश झलकता है। वह दुनिया के बीच खड़ा है, किसी के साथ बंधन या संघर्ष किए बिना सभी के लिए अच्छाई और कल्याण की कामना करते हैं। यह मतभेदों और पूर्वग्रहों से परे वैराग्य, समानता और सभी प्राणियों के प्रति दयालु दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करते हैं। तो कबीरदास जी ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए लिखा।

0: मथेन माखन हो। मुख में मीठे बोल है हृदय कपट का भाव, हृदय कपट का भाव मानो में अब है नहीं। सच सुनने का चाव कबीरा, सच सुनने का चाव न्यायालय में लग रहा सच्चाई का मोल। जैसा जैसा दाम है वैसे वैसे बोल कबीरा, वैसे वैसे बोल। स्वांग रचाता है वही जिसके बन में चोर, स्वांग रचाता है वही जिसके मन में चोर। सत्य मौन रहता सदा झूठ मचाता शोर कबीरा, झूठ मचाता शोर। सत्य डगर कंटक भरी, सत्य डगर कंटक भरी चलता जो इंसान जग में अपने कर्म से बनता वही महान कबीरा, वह बनता वही महान। ये मैं फिर से दोहराऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। सत्य डगर कंटक भरी, सत्य डगर कंटक भरी चलता जो इंसान, चलता जो इंसान जग में अपने कर्म से, जग में अपने कर्म से बनता वही महान कबीरा, बनता वही महान। अब एंड है हमारा, इस समाचार मैंने ख़त्म करना है और शुरू करके यहाँ पर आप लोग अपने बच्चों को हिंदी संस्कृत पढ़ने लिखने बोलने सीखने के लिए रजिस्टर कराएं BHPSA.org पर। वैदिक चैंटिंग एंड भगवान गीता BCC क्लास भी सप्ताह में 4 दिन होता है, मंगल आप संडे को आप 11 से 1:30 बजे तक गुडूर प्राइमरी स्कूल में भेज सकते हैं, और जूम पे हम ऑनलाइन प्रतिदिन पढ़ाते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू मैं आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए हिंदू संगम चैनल पर। और आज बड़ा अच्छा लगा कि मैं थोड़ी से भोजपुरी में बात की, मैं तो भूल चुकी हूँ लेकिन मैंने कोशिश की कि भोजपुरी में बात करें। मैं हूँ दयावती पांडे फ्रॉम 5EBI 103 FM मल्टीकल्चरल रेडियो हिंदू संगम चंगल संगम चैनल से। अब हमारा प्रोग्राम समाप्त होने जा रहा है, अगले महीने मैं मंगलवार को ही जुलाई में फिर आपसे मिलूंगी और इसी टाइम पर मिलती रहूंगी। अगेन थैंक यू फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी MCCA। आप यह भजन सुनिए, भजन है भगवान का।
1: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
2: Well, the time is now 2:30, and that is time for our sports program, The Bounce That Counts.

0: सारा दिन गाना सुनता रहता। पसंद रसो को है?
1: दादाजी दादा सुन पे जने दाखो अली जफर दे।
0: होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देखा। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान में गाएगा।